देवा पंडित ने बहुत उड़ीक की कि सूरज चढ़ गया, दोपहर हो चली है, हुण तां राजे ने आना ही नहीं। सारी समग्री कठी की ते मन दे विच पता नहीं की ख्याल

मूर्तियां दे गलों ओ हार ला के इस देवा पंडित ने ओ हार अपने गल विच पा लिया ते मंदिर दा बुआ बंद करन लगा ते दूर सारे राजे दा रथ आंदा दिस पिया। राजे नू देखिया ते देवा पंडित घबरा गया कि राजा आ गया, हार मैं अपने गल पा लिया।

अपने गलों ला के मूर्तियां दे गल पाया सी, मूर्तियां दे गलों हार ला के ते राजे दे गल पा दिता। राजा चला गया, देवा पंडित ने सुख दा साह लिया के चलो बला टली। राजा अपने महलां विच चला गया, हार ला के राजे ने सामने रखिया। देवा पंडित बुजुर्ग सी, वाल चिट्टे सन, उस हार दे नाल दो चिट्टे तौले लगे हुए सन, चिट्टे वाल। ते राजा हैरान हो गया, कहन लगा अज तक ते कदी किसी हार दे नाल वाल लगे नहीं देखे, अज पहली वारी हार दे नाल दो वाल देखे ने ते ओ भी चिट्टे। ते देवा पंडित बुजुर्ग है, ओदे वाल चिट्टे ने, पत्थर दियां मूर्तियां नू ते वाल आंदे नहीं। किधरे ए हार देवा पंडित ने अपने गल विच तां नहीं पाया। राजे नू शक हो गया। राजा कहन लगा चंगा फिर कल नू जाके पुछांगा पंडित नू कि ए वाल कित्थों लगे ने। उधर देवा पंडित बेफिकर है, पर राजा जिहड़ा है ए हुण सोच रहा है कि ए वाल किधे ने। उस

देवा पंडित बड़ा बेफिक्र है कि कल दी गल आई गई हो गई, पर राजा पूछदा है

राजा आ पहुंचे है। देवा पंडित दी अखां बंद ने, उन्हों कोई पता नहीं राजे ने आना है। उदा मन जुड़ चुका है। राजा आया, राजे ने मंदिर दा टुकिया होया बुआ खोलिया, ते की देखिया पत्थर दी मूर्ति ते सफेद लम्मा दाड़ा आया होया। देवा पंडित वल देखिया, ओ हाथ जोड़ के बैठा है, अखां बंद ने। राजे ने नमस्कार की थी, देवा पंडित नु हलाया, देवा पंडित ने अखां खोली।

देवा पंडित निहाल हो गया, ओ ता बलिहार जा रहे है, पर जेड़ा राजा सी उदे मन विच शंका पैदा हो गया। राजा कहन लगा, अज तक सुनिया नहीं के पत्थर दी मूर्ति नू दाढ़ी आई हो, ए कदी हो ही नहीं सकता। इस पंडित ने पत्थर दी मूर्ति नू

उस पत्थर दी मूर्ति ने नक चढ़ाई मानो के दुख प्या लगता है। पर राजे नू हाले भी भरोसा नहीं आया के पत्थर दी मूर्ति ने नक चढ़ाई। वो जिहड़े वाल सन राजे ने

बाजार विच आए, बाजार विच जिस जगह ए महापुरुष खलोते ने, जेड़े चबारे दे थले ए चबारा गनका विसवादा है, भाई गुरदास जी इस गल दी शाख भरदे हन।

अचानक ही इस गनका दे चुबारे थले आके खलो गए। गनका ने देखिया कोई साधु ठंड दे नाल कंबदा पे है। इन्हें बुआ खोले क्या संत जी उत्ते आ जाओ, महापुरुष चुबारे आ गए ने। सुके कपड़े दिते गनका ने, अग बाली, महापुरुष बैठे चुबारा देखे। कहन लगे मना तू बड़ी गलत जगह ते आ गए। महापुरुष उठ पे कहन लगे मैं वेसवा दे घर आ गए। महापुरुष उठ के तुर पे। गनका जिहड़ी सी हाथ जोड़ के महापुरुषां दे चरणां ते डिग पई। कहन लगे संत जी मैं सारी उम्र पाप कीते ने, पर हुण पापां तों डर लगन लग पे। मैनू कृपा करो, मैनू नाम दान बख्शो तां कि मैं इन्हां पापां तों बाहर निकल सकां। ओदी बेनती सुन के महापुरुष ओदे ते दयाल हो गए। कहन लगे बेटा साडे कोल ऐ तोता है, ए असी तेनू दे चलने आ, ते तेरा काम रोज सवेरे उठ के इस तोते नू जदू उठाना है ता ए कहना है गंगा राम कहो राम राम। जे ता इनू राम राम जपावे ता तेरा उधार हो सकता है। गणका कहन लगी महाराज जिस तरह कहोगे मैं उस तरह करांगी। महापुरुष अपना तोता इस गणका पापण नू दे गए ने, भाई गुरदास जी बयान करते हैं।

कहना गंगा राम को राम राम। रोजाना ही हुण पाप छड़ दिते ते तोते नू राम राम जपान लग पई ते एदी लिव तोते नू जपांदिया जपांदिया अपनी भी लग जांदी है।

जमदूत पछाट गए, देवते बैबान लेके आ गए ने। उस वेसवा दी रूह नू बैबान विच बिठा के बैकुंठ जिथे परमेशर है, जिथे परमेशर दा नाम है, उस बैकुंठ नू ओ पापन वेसवा सारी उम्र पाप करती रही, पर मन करके राम किया ते ओ वेसवा भी बैकुंठ नू चली गई। नौ नारायण छोत अछोता कि जिहड़ा परमेशर दा नाम है ओ पापा तो रहत है।

मथुरा दे राजे कंस नूं तिलक लाया करदी सी। एक दिन चंदन दा तिलक लगाण वास्ते कंस नूं ए जा रही है। कंस जिहड़ा सी कृष्ण भगवान दा मामा सी, पर जिथे कृष्ण भगवान अवतार सन उथे कंस बड़ा पापी और दुराचारी सी। एक कुबजा कंस नू टिक्का लगाण वास्ते जा रही है। उधरों कृष्ण भगवान एदे सामने आ निकले। कृष्ण भगवान दा रूप देख के, उन्हां दा प्रताप देख के कुबजा मालन कृष्ण भगवान दे सामने खलो गई। इन्ना मन विच प्यार ते श्रद्धा, ओ जिहड़ा तिलक कंस नूं लाया करदी सी ओ कृष्ण भगवान दे मत्थे ते ला दिता ते गल विच हार भी पा दिता। ते कृष्ण भगवान इन्ने दयाल हो गए कि गणका पापण नूं जिस तरह परमेश्वर ने तारिया, परमेश्वर दे नाम ने इसे तरह ही कुबजा ते भी ओ परमेश्वर अज दयाल हो गए ने। कृष्ण भगवान ने कुबजा दा एक हाथ फड़िया, अपना पैर कुबजा दे पैर ते रखिया ते हाथ फड़ के जोर दी तां नूं हुजका जिहा मारिया ते कुबजा जिहड़ी मालन सी उहदा कुब कढ दित्ता, उहदा लक सिद्धा हो गया। इह इलाज ना कोई डाक्टर कर सकदा है ना कोई हकीम, पर उस भगवान ने एक हुजके दे नाल कुबजा मालन दा जिहड़ा लक सी ओह एकदम

जानते हो मुकुट पे बदक एक शिकारी सी चरण कृष्ण भगवान दे एक रात कृष्ण भगवान जंगल विच लेटे हुए सन। अपने एक लत ते दूसरी लत रख के कृष्ण भगवान दे पैर विच पदम सी जिड़ा के बड़ा चमक रहा सी। रात दा वेला सी, ए बदक शिकारी शिकार खेडन वास्ते आया। कृष्ण भगवान दे पैर विच जिड़ा पदम चमक रहा सी, इन्हें समझिया कि शायद कोई हिरण बैठा है। किसे हिरण दी अख पई चमकदी, उस बदक शिकारी ने निशाना लगा के तीर छड़िया। ओ जड़ा तीर सी कृष्ण भगवान दे चरणा विच आके लगा। बदक शिकारी आया, हिरण दी जगह कृष्ण भगवान दे चरण जख्मी होए देखे, ता ए भगवान दे चरणा ते डेग के रोन लग पया। ते कृष्ण भगवान ने कहा, भाई तू रो ना, परमेश्वर ने लिखिया इसे तरह सी, तू साडे पैरां विच तीर मारे है क्योंकि साडा आखरी समा आ गया। असी हुण ए दुनिया छड़ के उस परमेश्वर दे कोल जाना है। भगत नामदेव जी कह रहे ने कि उस बदक शिकारी ने भावें कृष्ण भगवान दे चरणा विच तीर मारे है, पर कृष्ण भगवान ने उन्हों फिर भी गल दे नाल लाया ते उह मुकत पए। ते उस बदक शिकारी नू भगवान ने तीर खा के भी मुक्ति दे दिती। ते भगत जी कहंदे ने, हों बल बल जिन राम कहे, मैं उन्हां तू बलिहार जाना जेड़ा इंसान मन करके

दासी सुत बिदर पांडवां दा मतरेया भरा सी। पिता ते पांडवां दा जिहड़ा पिता सी ओही बिदर दा भी पिता सी, पर बिदर दी जिहड़ी

के भगवान ने दासी सुत दासी दे पुत्र बिदर नु भी तारिया सुदामे नु भी तारिया ते उग्रसैन जिड़ा सी उग्रसैन को राज दिए। उग्रसैन कंस दा पिता कृष्ण भगवान दा नाना सी। कंस ने अपने पिता उग्रसैन नु कैद कीता होया सी ते आप राजगद्दी ते बैठा जुलम कर रहा सी। कृष्ण भगवान ने कंस नु मार के अपने नाने उग्रसैन नु फिर

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पीड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया, जे मन विच दुई है तो फिर की कीता। गुरु पिज जांदा है, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक पीजे साचे नानक। इसलिए भाई अपने मन नू गुरु दे चरणा विच जदों भी लियाओ, सब कुछ बाहर छड़ के आओ, और आके की कहो मेरा मुझ में किछ नहीं। गुरु नानक दे बख्शणिया कोई टाइम नहीं जे लगना, जेड़ा आप छोड़ देंती है, जेड़ा अपना आप छड़ दवे, अपनी हंकार कमांड छड़ के आखे की आखे तुसी भी आखो किसन दी समाप्ति है।

परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानकसर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओह भी साध संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी, छल फिर समुंदर दे विच खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीआं लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

विचार अर्पात रहन जे रूप रंग अनरेख भेद को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव पर

सच्चे मनो उस परमेश्वर दी भक्ति करदा है, ओदा नाम लैंदा है, ता ओ परमेश्वर किस तरह आके मिलदा है जिवें धन्ने नूं मिलिया। भाई गुरदास जी इस तरह बयान करदे ने।

पुजारी ने अपना पिछा छुड़ा लिया। होने ते फर्क है, ओ पुजारी पत्थर दियां मूर्तियां दी पूजा करदा है, पर पत्थर समझदा है। ते तरने नूं उस पुजारी ने कोई मूर्ति नहीं दिती, बाहरों एक पत्थर चुक के दिता, पर तन्ने दी भावना उस तन्ने ने उस पत्थर नूं ठाकुर समझ के ते अपने सिर ते चुक लिया ते मन विच की

के दही रिड़क के लस्सी बनाई, एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी लई ते ठाकुर दी

जद तक तू रोटी नहीं खावी ठाकुर भुखा मर जांगा ते मरांगा भी तेरे सिर चढ़ के बदनामी भी होवेगी ता तेरी होवेगी लोग कहणगे के भगत भुखा।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब किन्ने रब देखे उन्नू पुछो भाई तू इस लायक है कि तू रब नू देख सके जे देखना है उस नू ते भगत धन्ने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जद तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाएंगे। जद कदी क्या नहीं उन्नू मिलन दी कोशिश नहीं कीती ते सानू और रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठा है कहन लगा ठाकुर फैसला कर लिया है जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार लिया ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतख होके तन्ने दे सामने बैठ गए।

परमेश्वर नूं परतख हो के तन्ने दी रोटी खानी पई। छाए मोलावे ते तन्ने दी बनाई होई ओ छाए लस्सी।